जागत जोत जप निसबासर गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

प्यारे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। प्यारे जी, आप जी अपने तख्तां ते बड़े प्यारे लग रहे हो। आप जी दा शुकराना है जो खुले दर्शन दारे दे के बख्श के साढ़े वर्गे कलयुगी जीवां दा पार उतारा कर रहे हो। सतगुरु जी, आप जी नू लख लख वार नमस्कार है। प्यारे जीओ, लख लख वार नमस्कार। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ प्यारे सतगुरु जी दे दर ते हाजरियां लवाइए। सब वीर भैणा अपने हथ जोड़ो जी, अपने नैणा नाल सतगुर प्यारे जी दे दर्शन करदे होए सतगुरु जी नू सीस चुका के

गज के गौ भाई कदे कोई बैडमिंटन कोई चिड़ी छिका कोई टेनिस खेडे हो जे अगला खिडारी जवाब ना ना दवे ते खेड दे विच कोई मजा नहीं रह जांदा कोई भी चीज उदो ही वधिया लगती जदों बराबर दी गल होवे सुरतां नूं जोड़िया करो आप जी पहली गल है हुणे दूजे गुरद्वारा साहब तो आए हैं वह भी हाल बड़ा वड्डा सी संगत खिंड खिंड के बह जांदी है जदों आप जी खिंड के बैठोगे आप जी की आवाज कदे कट्ठी नहीं होएगी तो वाइब्रेशन नहीं बनेगी झिझक बनी रहेगी कदे भी आनंद नहीं आएगा गुरबाणी पढ़न च झिझक है आनंद नहीं है सिमरन करन च झिझक है आनंद नहीं है गाउन च झिझक है आनंद नहीं है माफ करना कथा करन च भी झिझक है आनंद नहीं है जिथे झिझक है क्यों जी किसे नूं मिलदे हो जिथे जिस किसे नूं मिलो ते झिझक होवे तां प्यारे हो उत्थे मिलदा आनंद आउंदा है आनंद उत्थे जिथे खुल के प्रेम दे नाल मिलिया जावे आओ एक बेनती करिए माफ करना आप जी सारे को माफी मंग लेने पहला एक बेनती साड़ी मान लो सारे वीर जिन्हां नूं ढोल आउण दी लोड़ नहीं उठ के इत्थे सतगुरु जी दे कोल आ जाओ कट्ठे लागे लागे बैठो ते फिर गाउण दा आनंद आएगा आओ भैणां वी सतगुरु जी दे कोल हो जाओ उठ के।

महाराज जी कृपा करे। कहिंदे उच्चा सिम्मल चंटोला, गाओ सारे, उच्चा सिम्मल चंटोला। कहिंदे सिम्मल दा रुख है जिथे सोने सोने फुल, इको धरती इको पानी है, उथे सिम्मल दा रुख है एक जंगल दे विच, बड़ा उच्चा है बड़ा चौड़ा है सोहना भी लगता है। तुहानू सच्ची गल दसीए, आड़ा लाल लाल फुलां वाला यह सिम्मल दा रुख है प्यारियो। इहदे फुल वड्डे साइज दे हुंदे आ ते दूरों अट्रैक्ट भी करदे ते पंछी भी आउंदे हन इहदे ते। और जिहड़ियां पंक्तियां पढ़ के हटे ना, फल फिके फुल बक बके कामना आवें पत, महाराज कृपा करे कहिंदे उच्च

हल हल मूल न चुकई, खल हल अंदर कदे शांत नहीं हुंदा, हर वेले भज्जा फिर रहा है। ते हुंदा की है, जदों ये नहीं ना कमाउंदा गुरु दे शब्द नूं, फिर एक दिन आउंदा है।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुकते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया। वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए। बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए। पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निवाही। तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका। सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रछे आ रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी

देग तेग पंथ की राज करेगा, धूल ते निशान रहे, लाग ते दीवान रहे, गाव ते सुजान रहे, बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

खेते ससेर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे सा बून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुते माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठिकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाओ जानै अगै गया ना सूहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखियै लेखै होए विनास नानक वड्डा आखियै आपे जानै आप सालाही सालाही एति सुरत न पाइया नदिया अतै वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनहु न विसर है अंत न सिफते कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जानै सोए जेवड आप जानै आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए केते मंगह जोद अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटह बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे
ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਹ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵ ਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਰ ਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਾਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ, ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਨੂੰ। ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ। ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ, ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੇਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾ ਤਿਸਾ ਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾ ਤਿਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਖਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ। ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਪੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ, ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ। ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏ ਤੋਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੇ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਖੋਹ ਕਰਮ,
केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहिया भार पूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगणता पताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन काउ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहार सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह है जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते
नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं किरतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निरलंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता
परम परम परमेश्वर वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अचेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पूजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासि सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासि।

के सर्वत्र माने आए, के सर्वत्र दाने आए, के सर्वत्र गौना है, के सर्वत्र पावना है, के सर्वत्र देसा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र साजा है, के सर्वत्र दीना है, के सर्वत्र लीना है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देसा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काला है, के सर्वत्र पाला है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र सोखा है, के सर्वत्र पोखा है, के सर्वत्र तराण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देसा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्या है, सदैवं प्रधान्या है, के सर्वत्र जापया है, के सर्वत्र थापया है, के सर्वत्र भाना है, के सर्वत्र माना है, के सर्वत्र इंद्रा है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलिम है, के परमं फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुस्नुल वजू है, तमामुल रुजू है, हमेशुल सलाम है, सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अछेज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वील प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं बेभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं बेभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अभंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं
हरी फुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बिहिस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है हर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विस्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कार है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बेस्वं पर है करुणालय है निरिप नायक है सर्ब पायक है भव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्बा कृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्ब आत्म है आत्म बास है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भुजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश
अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल सरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्करवर्ती चत्तर चक्कर भुगते सोयं भव सुबं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सोएक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जाल मै थाल मै पाल ही पाल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत
अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पिछाह को सीस निवायो को उबुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साहि दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करियै सब बैरन कौ आज संगरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊं जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुजू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियाहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै
तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकाओ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव काओ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तन कमह हारे हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट शाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छै करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार, चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सतरह सहस पनिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भादरव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार।
ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ ਸਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਾਣ ਦੇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੋ ਕਥਿਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਆਏ, ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ, ਜੀ ਆਹੋ ਮੈਲੇ ਬਹ ਰਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਹ ਰਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਜੀ ਆਹੋ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਜੀ ਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਆਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀ ਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ,
ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੀ ਅਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੁ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਹੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਏਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸੇਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹਿ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੈ ਵਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ

रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपिहो जियाहो, लाहा खटिहो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा, कहै नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए हूरत कितै, जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया हर रस, बहुड़ ना त्रिसना लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कहै नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा, चलत नदरी आया। कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहै नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्ब लिखिया पाया। कहै नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कहै नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए, शरीर लाए। सुनहो सत बाणी जित सुनी, मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी, सच अलख वेडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कहै नानक अमृत नाम सुनहो, पवित्र हो वहो। साचै सुनै नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख। कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरद्वारे लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निद, तिस दा अंत ना जाई पाया। कहै नानक हर प्यारै जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचै घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचै, जिथै सदा सच त्याव है। सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव है। एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जन पाव है। कहै नानक सच सोहेला सचै घर गाव है। अनद सुनहु वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे।
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया। कछ आरा पार ना सूझ, सगल भवन के नायका।

दर्शन परसियाय गुरु कै जनम मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद तो

सुहुदरा देवदाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान भजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता

कण तरांत मंद्र मंद्र पुआए सोए पय कृतन चे सब कोय नाच नाच हस चले सोए रोए उठना जाए सदना हो नचन।

गौर गौर करहो। गुरु सद कव नल कह, जिन गुरु न देखियो नह कियो, ते अक्याथ संसार मह। हे प्राणनाथ गोविंद, कृपा निदान जगद गुरो। हे संसार तप हरण, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालु है।

सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कह नानक लाव पहली, आरंभ काज रचाया, जन कह नानक लाव पहली, आरंभ काज रचाया। हाजी मत्था टेक लो।

सब सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपा पह मन होए होमे मैल गवाया बलराम जियो निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेख राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाए अनहद शब्द वजाए जन नानक दूजी लाव चलाए अनहद शब्द वजाए।

प्रभु मन चौपया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी।

निमख निमख तुम ही प्रत पालो, हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे।

जिहवा एक कवन गुण कहिया बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ कोट पराद हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरे तुम्हें आपन बिरध रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर आनंद कारज गुरु साहिब की कृपा नाल संपूर्ण होए हन, सच्चे पातशाह दे चरणा विच अरदास होई है। सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश कीता, तनासरी महला पंजवां, तुम दाते

पंत सेला आगै होए। पंत सेलै जावो तां फल पावो, आगै मिलै बढाई। पेटै सो जावो सच समावो, तां पत लेखै पाई। मैले जाए पावो खसमै पावो, रंग सुरलियां माणै। मरण मंदा लोकां आखियै, जे कोई मर जाणै। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवान। सूरे से आगै आखियै, दरगै पावै साची माणो। दरगै मान पावै पत सो जावै, आगै दुख न लागै। कर एक त्यावै तां फल पावै, जित सेवै पो पागै। ऊचा नहीं कहना मन मैं रहना, आपे जाने जाण। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवान। नानक किसनो बाबा रोई, बाजी है एहो संसार। कीता वेखै साहिब अपना, कुदरत करे विचारो। कुदरत विचारे धारण तारे, जिनकी आसो जाने। आपे वेखै आपे बूझै, आपे हुक्म पछाणै। जिन किश किया सोई जाणै, ताका रूप पारो। नानक किसनो बाबा रोई, बाजी है एहो संसार। बड़हंस महला पहला, दखणी सच सरंदा सच्चा जानिया। सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपीने आप साजिया। सचड़ा लख पारो, दोयपुर जोड़ बिछोड़न। गुरबिन कोर अंधारो, सूरज चंद सिर जन। एनस चलत विचारो, सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा। देह प्यारो रहाओ, तुध सिर जी मेदनी। दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजै। बिख माया मोह प्यारो, खाणी बाणी तेरिया। देह जिया आधारो, कुदर तख्त रचाया सच न बेड़न हारो। आवागमन सिरजिया तू थिर करण हारो। जमन मरना आए गया, बदक जियो बेकारो। भूडड़ै नाम बसारिया, बूंडड़ै क्या तिस चारो। गुण छोड़ बिख लद्या, अवगुण काबन जारो। सदड़े आयत ना जानिया, हुक्म सचे करतारो। नारी पुरख विछुनिया, बिछुड़िया मेलन हारो। रूप न जाने

जुग जुग जानस जाना रोबे सच समाले। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौमा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीना। कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीना। बिखियन

होए, जे समरत संकट मिटै दर्स तुम्हारो होए। राम नाम उर मैं गयो जा के।

जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचाए तिसका हुए उदारो। ए वस्त तजी न जाई नित नित राखुर तारो, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

0: सत्संगत मिले सो तरिया,
1: गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहा,
0: जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया,
1: सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पो करिया,
0: उड़े उड़ा वैसा कोसा जिस पाछे बचरे छरिया,
1: तिन कवन खलावे कवन जगावे मन में सिमरन करिया,
0: सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया,
1: जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया,
0: राग आसा महला चौथा सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा,
1: सब ते आवे तुद जी हर सच्चे सृजन हारा,
0: सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा,
1: हर ते आवो संतो जी सब दुख विसारन हारा,
0: हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा,
1: तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाना,
0: एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाना,
1: तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तद बिन अवर न जाना,
0: तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना,
1: जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना,
0: हर त्याव है तुर जी से जन जुगम है सुखवासी।

0: पंद्रह छिसका काटा शीशा श्री अस्केत जगत के ईसा
1: पोपन पृष्ठ गगन ते पई सबेन आन बधाई दई
0: धान्य धान्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा
1: अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे
0: कबे बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दर रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा
0: हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो
1: सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करता
0: मोर अच्छा निज कर दया करिया सब रण को आज संगरिया
1: पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा
0: मैं छाड़ कोई अवर न त्याऊं जोबर चाहो सो तुम ते पाऊं
1: सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया
0: आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया
1: पूजो सदा हमारे पच्छा सी अस्तुजु करियो रक्षा
0: राख लिहो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा
1: काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो
1: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जवन काल सब जगत बनायो देव दैट जच्छन उपजायो
1: आद अंत क्या अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाज ने आप सवारी
1: सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो
0: घट घट के अंतर की जानत भले भले की पीर
1: चीटी ते कुंचर अस्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक ही पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जब उध खरक करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा
1: जबा करख कट हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ
0: जेते बदन सृष्ट सब तारा आप अपनी बूझो चार
1: तुम सब ही ते रात निरालम जानत भेद भेद अर आलम
0: निरंकार निरभकार निरलंबे आलिया नीला नादा संभ
1: ताका मुड़ चारत भेदा जाको प्रेम ना पावत भेदा
0: ताको कृपा हन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत
1: महादेव को कैत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव
0: आप अपनी बुद्ध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तुहे देती
1: तुमरा लखा न जाय पसारा केवल सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा
1: अंडज चेरज से तजकीनी उत्पज खान बहुर रस दीनी
0: कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा
1: सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आज जगाद स्वरूप से अंपव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संगरो
1: दुष्ट चिते उठवा तत पाता सकल मलेच करो रन काता
0: जी अस्त जितब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तवे मरे
1: और खजवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो कुल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न है
1: रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरन तत्काला
0: कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तिनक मह हरि हो
1: रिद्ध सिद्ध कर मुंह सब होई दुष्ट छाछ होया कहना कोई
0: एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा
1: जिन्नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा
0: खड़क के तुम्हें सलन तिहारी आप हाथ दे लिहो बारी
1: सर्ब ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई
0: कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूनन सुबराता
1: किल बिक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छा करता
0: श्री अस्तुजा पे रे आला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: मन भांचत फल पावे सोई दुख न ते सह व्यापत कोई अडिल
0: सुनै गुंग जो या

0: सम्मत सत्रह सास पनिजा अर्ध सास मन तीन कहिजा
1: पादर सदियस नीरवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सतारा
0: अंत श्री चरित्र बख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे
1: चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त जून दोहरा
0: दास जान कर दास पर कीजे कृपा।

0: पई।
1: नैना गणेश हे प्रथम बनाओ कृष्ण बसन कब हूं नह त्याऊं।
0: कान सुने पहचान तिन सो रे बागी मोरी पग इन सो।
1: महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो।
0: अपना जान करो रखवार बाहे गए की लाज बिचार।
1: अपना जान बुझे व्रत बरिया चुनचुन सतर हमारे मरिया।
0: देख देख जग में दो चला राखा मोय और न दला।
1: तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा।
0: जान अपना मुझे निवार जाप करो हमरे सब काज।
1: हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा।
0: दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तो है।
1: अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।
0: दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो।
1: प्रथम त्रो भगवत को ध्याना बोहर करो कब ताब नाना।
0: कृष्ण जथा मत चित्र उचारो चूको कब ले सुधारो कब बाच दो।

0: चलते उपजत रंग जियो जल ही बिखै समाहे दोहरा
1: जब आयस प्रभु को पयो जन्म तो राजक आए
0: अब मैं कथा संक्षेप ते सबु कहत सुनाए कब पाच दोहरा
1: पाठ प्यो मैं जोर कर बचन कहा सुन आए।

0: राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पावत नेत
1: स्वर्ग बास रग भर करा सगरी पुरी समेत चौपाई
0: जो यह कथा सुने अरगावै जुह पाप तह निकट न आवै
1: बिसन भगत की ए फल होई आग ब्याज छुए सके न कोई
0: सम्मत सतर है सहज बचावन हार विधि प्रथम सुख दावन
1: तो है प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल बलि लहले हो सुधारा दोहरा
0: नेत्र तुमके चनन तर सुतद्र तीर्थ रंग
1: श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा
0: साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद
1: ग्रंथ सकल पूरन की।